0: साथ बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: बहुत खुश हूं।

0: लाइका गोल्ड। साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
1: You know how fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
3: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

0: दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो

0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
2: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनत है वार।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी।

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए। लो साहेब हमसे रू

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोहन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गावन पंडत पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले गावन रतनु पाए तेरे 68 तीरथ नाले।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है भी हो

आहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोला खोवें लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे।

0: कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter. Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
3: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
2: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
3: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
4: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर, DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे।
5: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Bye. Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine aur 8 amazing Caribbean islands aapka intezar kar rahe hain. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956 154 846.
1: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
2: Big Boss में इस बार मिलेगा वरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान तुम्हें जान.
3: Catch the brand new season of Big Boss, hosted by Salman Khan. Starts this Sunday at 9:30 p.m. and every day on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house only on Jio Hotstar.
4: Hi, this is Chitranibal Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves, presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
5: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया. खुशियों का खजाना.
6: लाइका रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन.
7: चहकती है खग, लहराती है तरुवर, हिलोरे मारती है तलैया, शाम रंग में रंगने को आया जो है सबका कन्हैया. लाइका रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं.
8: लाइका, कूल म्यूजिक फॉर अ सुपर हॉट समर टाइम ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
1: मधुबन में जो कन्हैया किसी को
2: प्रेम की लहर और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है, जब कान्हा के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है, श्रीखंड सा खट्टा और माखन मिश्री सा मीठा मीठा, कितना लुभावना है ये कहना। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई लाइका रेडियो की ओर से।
3: लाइका गोल्ड ब्रेकफास्ट विद काजल ऑन लाइका गोल्ड।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल anywhere इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब World.com
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 kilograms जस्ट 8.96 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
6: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
7: Dubai is the place.
6: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
8: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com Limited offer. Terms and conditions apply.
10: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears. Give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
11: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
12: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
11: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali story, the journey of Ram and Sita.
12: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
13: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
12: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Gold Breakfast with Kajal.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कव्वाली की महफिल, कव्वाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
3: अपना बनाया तेनु,
2: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फट।
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
6: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Dubai is coming to London.
9: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
8: At London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
9: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
8: Hurry and register now
9: at nknpropertyexpo.com.
8: Your next investment could begin here.
9: Official Radio Partner, Leica Radio.
10: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
11: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
12: है प्रसन्न महालक्ष्मी, कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
13: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
14: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: Gold Breakfast with Kajal on Leica Gold.

0: एस जी बर्मन के म्यूजिक पर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आपने ये गीत सुना। सुपर हिट फिल्म आराधना से और उससे पहले बड़े दिल वाला, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले। क्या म्यूजिक दिया है और क्या गीत लिखा है। ये थी फिल्म बड़े दिल वाला। और लीजिए, दो बैक टू बैक गीतों के साथ आज फ्राइडे के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और आज भारतवासी जहां कहीं भी फैले हुए हैं, जो भी आज जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, सभी को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। और बस यही कहूंगी कि श्री कृष्ण आपके जीवन की सारी तकलीफ दुख परेशानियों को हटाकर उसकी जगह सुख शांति आपके जीवन में भर दे। मजे के साथ आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाइए। आज उसके बारे में बात होगी क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। लेकिन सबसे पहले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और बता दूं कि आज फ्राइडे के दिन भी मैं ऋतु शर्मा आप ही के साथ रहूंगी। अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक एक नहीं दो नहीं ढेर सारे गाने सुनवाऊंगी, चिंतन भी होगा, बातें भी होंगी, आपके मैसेजेस भी शामिल रहेंगे। और हाँ, याद रखिए आज मौसम थोड़ा गड़बड़ है। फिलहाल तो गड़बड़ है लेकिन सुन रहे हैं कि दोपहर के बाद अच्छा हो जाएगा और होना भी चाहिए भाई, हमें मंदिर भी तो जाना है, कान्हा के दर्शन भी तो करने हैं। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी लेकिन जो भी मेरा साथ दे रहे हैं, सभी का स्वागत है इस शो में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.15 भारतीय रुपए। याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This just in from Greggs. We've insured the nation against a cheese. That's the Stilton in our new Steak and Stilton Bake, insured because a third of you are currently thinking, but I don't like Stilton. So, if you don't like our Stilton through soft steak and gravy in pastry that flakes all down your top, we'll swap it for a steak bake. Greggs' new Steak and Stilton Bake with free, but I don't like Stilton insurance. Terms apply, exclusions none, excess none, already bitten it fine in the event of a claim, we'll be very surprised.
3: Like our gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: Deirdre, look, it's the Bottomleys this time, sliding across their car bonnet.
6: Leave them be, Philip. They just claim confident.
5: Claim confident?
6: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
5: Deirdre? Deirdre? Come back here.
7: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
8: No, sorry, mate.
9: No, we don't have that part.
8: Have you tried down the road?
10: We can get it in, but it won't be for a few days.
11: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
12: Ayodhya ki awaz ab London ki dharti par. Siddhashram dham mein param pujya Shri Raj Rajeshwar Guruji ki sanidhya mein Devi Pandit Gaurangi Gauri ji dwara Shri Ram katha.
13: Naam hai tera.
12: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें। जय श्री राम।
3: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
14: Lights on, shutters up, staff ready.
3: But today's customers don't start on the high street.
14: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
3: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
14: They walk into your competitors.
3: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
14: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.

0: जी हाँ, कितना मीठा गाना था और कितनी मीठी धुन बनाई थी नौशाद ने। फिल्म साथी से लिया था ये गाना, जिसमें थे राजेंद्र कुमार और साथ में थी वैजयंती माला, और जिसे आपने अभी सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिसमें ढेर सारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हैं, तो मेरी ओर से आप सभी को भी जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। फील गुड ट्रैक
1: brought to you by Dairy Valley. Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: to chaliye aapke messages par ek nazar dal lete hain, aur ye jo saathi film ka gana tha ye dedicate karte hain hamare Vijay Guduri ji ko, jo aap hamare sath jud chuke hain aur janmashtami ki dhiro badhaiya de rahe hain. So thank you, aapka swagat hai show mein. Thank you Hansa ji, thank you Mahendra Bajaj जी, वियाना में अनिल सोनी जी हमें सुन रहे हैं, विनोद जी, भरत कंग और राम जी, अर्जुन जी, संध्या जी, दीपक वोरा, तोची जी, हसुमती जी, मालती जी कहती हैं मेरा तो दिन बना दिया राजेश खन्ना का गीत सुनाकर, गुनगुना रहे हैं भवरे। ब्यूटीफुल गाना, और आज मौसम भी बहुत सुहाना है, तो उस मौसम में मुझे लगा ये गाना तो बजना चाहिए, मजा आया, जानकर अच्छा लग रहा है। थैंक यू हरीश खत्री जी, सुनीति जी, प्रज्ञा देसराज बसन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, जन्माष्टमी की। और हमारे राजेश जी कहते हैं कि दो शानदार गीतों के साथ आपने शुरुआत की है, खासतौर पर जो पहला गाना मुझे बहुत पसंद है, जीवन के दिन छोटे सही। चलिए ये गाना आपको डेडिकेट कर देते हैं। और इसके अलावा अरविंद जी आप हमारे साथ हैं, कहते हैं दो गानों के साथ अच्छा मूड बना है हमारा, तो बस साथ देते रहिए एक बजे तक, सुनते रहिए अच्छे अच्छे गाने, यूं ही सुनवाती रहूंगी। एंड मिसेस शेख राजकुमार जी, आपको भी हमारी जय माता दी, और राम राम। विजय गुनवा जी साथ में है, जासू जी, एंड ऑफ कोर्स हमारे हेतल सोलंकी जी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। ये है हैरी भैया, आपका मैसेज पहली बार आया है, लेकिन आपको जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां। हिमांशु जी, मृदु जी, वंदना गुटका, ऑफ कोर्स हमारे गिरीश जी जो कि इंदौर में प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो सभी का स्वागत है इस शो में। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अब सुनवाने वाली हूँ आज के प्रमुख समाचार। चलिए सुनते हैं।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबरें हैं भारत से। इसरो का नया स्पेस मिशन है जिसके बारे में आप सुन रहे होंगे। इसरो ने अपने GSLV F-17 रॉकेट के जरिए EOS-05 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। ये सैटेलाइट धरती से करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात होकर भारतीय उपमहाद्वीप पर लगातार 24 घंटे सातों दिन निगरानी करेगा। आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का 5,253 भी वाह, यानी कि भगवान का आज 5,253 जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन से लेकर देश भर के मंदिरों को बेहद खास तरीके से सजाया गया है और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज उमड़ रही है। भारतीय वायुसेना IAF ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम है खगंतक का सफल ट्रायल पूरा किया है। इसका नाम है खगंतक 243 और ये डिफेंस सेक्टर में भारत की जो प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता यानी कि सटीक निशानेबाजी जिसे कहा जाता है को बहुत मजबूत बनाएगा। आज घरेलू शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 500 से ज्यादा पॉइंट उछलकर 76,650 के पार चला गया। वहीं निफ्टी भी 23,900

0: सौ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईटी और बैंकिंग शेयर्स में जबरदस्त खरीदारी आज देखी गई है। और नेपाल में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा के बीच भारत ने राहत सामग्री से भरे 2 एयरक्राफ्ट काठमांडू भेजे हैं। संकट की इस घड़ी में भारत की तरफ से लगातार रेस्क्यू और मेडिकल एड भेजी जा रही है। अब कुछ समाचार विदेशों से। चाइना के आज उत्तर पश्चिम क्विंघाई प्रांत में तड़के आज सुबह 5.1 तीव्रता का अर्थक्वेक या भूकंप दर्ज किया गया और भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। उधर विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन दौरे और रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत ने अपना रुख फिर से साफ किया है और कहा है कि भारत तेल खरीद जारी रखेगा और शांति वार्ता यानी कि पीस टॉक में मध्यस्थता के लिए तैयार है। बैंक ऑफ कनाडा ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ घटते ट्रेड रिलेशंस और टैरिफ की अनिश्चितता के कारण महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन का खतरा फिर से बढ़ रहा है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा बदलाव करते हुए ओपन एआई ने अपना नया और एडवांस एआई मॉडल GPT-6 एस्ट्रा लॉन्च किया है और ये मॉडल केवल सवालों के जवाब देने की बजाय खुद कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने और मल्टी स्टेप टास्क पूरे करने में सक्षम है। समाचार समाप्त होते हैं। यही थे आज के प्रमुख समाचार।
1: ये है Laika Gold Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles।

0: रफी साहब की आवाज में खूबसूरत गाना जिसमें म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और ये गाना डेडिकेट करते हैं किरण जी आपको, हंसा जी, रंजन जी, संध्या भावसर, शुमिला मंगर, जो सब हमारा साथ दे रहे हैं, और आप कौन हैं? आप हैं परेश व्यास एंड सपना व्यास जी। स्वागत है और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल in your nearest convenience store.
2: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो Southall Travel से कांटेक्ट कीजिए, उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। Southall Travel is at all protected.
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: This just in from Greggs. We've insured the nation against a cheese. That's the Stilton in our new Steak and Stilton Bake, insured because a third of you are currently thinking, but I don't like Stilton. So, if you don't like our Stilton through soft steak and gravy in pastry that flakes all down your top, we'll swap it for a steak bake. Greggs' new Steak and Stilton Bake with free, but I don't like Stilton insurance. Terms apply, exclusions none, excess none, already bitten it fine in the event of a claim, we'll be very surprised.
5: This is Life. Like a gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHub.com.
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
8: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
8: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place.
11: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
12: Danu 11, 11. Danu Properties.
13: We're finally going home for the wedding.
14: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
13: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
14: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
13: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
14: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
13: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
15: Watford में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
16: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
15: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
16: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.

0: Satco Microwave Food.
1: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
3: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
4: लाइका रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन।
5: मधुबन में जो कन्हैया किसी को
6: प्रेम की लहर और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है, जब कान्हा के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है, श्रीखंड सा खट्टा और माखन मिश्री सा मीठा मीठा, कितना लुभावना है ये कहना। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई लाइका रेडियो की ओर से।
7: लाइका। Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष में बहुत जगह दही हांडी का खेला भी खेला जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और वो माखन की मटकी को तोड़कर अपने दोस्तों के साथ चोरी छुपकी खाकर यशोदा मैया को परेशान भी किया करते थे। तो कृष्ण की इस लीला को दही हांडी के रूप में आज कई जगह खेला जाता है। और आज मथुरा वृंदावन में तो जो माहौल होगा उसे मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं 3 बार मथुरा वृंदावन के दर्शन कर चुकी हूँ और वैसे भी हमारे घर से मथुरा वृंदावन काफ़ी पास है, तो हमको जब भी समय मिलता था हम वहाँ हो आते थे। और मैंने 3 गोवर्धन की परिक्रमा भी लगाई हुई है, लेकिन काफ़ी साल हो गए हैं और मेरी इच्छा है कि मैं फिर से जाऊँ। और आज मथुरा वृंदावन में तो होगा ही बहुत ही खूबसूरत माहौल, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज द्वारका में क्या हाल होगा। पहले मैंने द्वारका का मंदिर नहीं देखा था, मैं वहाँ नहीं गई थी, तो मैं सोच नहीं सकती थी कि वहाँ क्या हाल होगा। लेकिन जब से मैं द्वारका होकर आई हूँ तब से मुझे लग रहा है कि ओह माय गॉड, आज के दिन लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिन्हें द्वारकाधीश के दर्शन करने को मिलेंगे, वो भी जन्माष्टमी के दिन। बहुत ही बड़ी सौभाग्य की ये बात है उन लोगों के लिए। खैर, आज हमारे जितने भी साथी सुन रहे हैं बधाइयाँ दे रहे हैं लगातार, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। मनीषा वोरा, हंसा वोरा, मनीषा शाह, अमिता जी, थैंक यू। ये है हमारे साथ पुरुषोत्तम एंड संतोष जी, अर्जुन जी, जैमिनी जी, मालती जी, देसराज बसंत जी, संध्या भावसर एंड मानु जी, स्वागत है आप सभी का और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ।
1: ये है Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये £1 आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Like a Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £106.08 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड।
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: Har meal ko banao thoda aur special with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms, just £8.96. 10 kilograms, only £16.96. And the big 20 kilograms pack, just £29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers or har special celebration. Hurry, offers ending soon. Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make everyday grand.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
8: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
7: डेजर्ट सफारी,
8: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
7: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
8: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410। साउथ हॉल ट्रेवल।
9: Protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
11: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
11: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
12: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
11: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. London, get ready for an unforgettable night.
14: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
13: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
14: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
13: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
14: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
13: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
15: The wait is finally over.
16: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
15: Mirzapur is coming to the big screen.
17: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
15: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
18: Agar Kaleen bhaiya hai wo King of Mirzapur.
15: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. अब सिनेमा में और भी बिगर मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
19: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
20: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
21: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
22: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
23: Wake up to Kajal on breakfast at 6 a.m. and drive back with Sandy Shah at 4 p.m. Leica Gold.

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: किशोरदा की आवाज में ये गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार होगी आपकी मेरी फिर से मुलाकात।

गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। आज है 4 सितंबर और आज हमारे बहुत सारे साथी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हमारी ओर से ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ। और आज बहुत बड़ा दिन है, आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनके अलावा मैं आज और किसकी बात कर सकती हूँ। लेकिन श्री कृष्ण के बारे में बात करने से पहले मैं जरूर ये कहूंगी कि देखिए, आज मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन है, लेकिन शायद पहले से कम धैर्य है। उसके पास संवाद करने के लिए अनेक माध्यम हैं, लेकिन फिर भी भीतर का अकेलापन बढ़ता जा रहा है। छोटी से छोटी असफलता उसे भीतर तक हिला देती है। संबंधों में आया मामूली तनाव उसे निराश कर देता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए डिप्रेशन जैसे शब्द सहजता से ही बातचीत का हिस्सा बन गए हैं। आसानी से लोग कह देते हैं, अरे डिप्रेशन हो गया था, जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं हो। और ऐसे समय में प्रश्न ये नहीं उठता कि कठिनाइयां क्यों आती हैं। प्रश्न ये है कि कठिनाइयों के बीच मनुष्य स्वयं को कैसे संभाले। और इस प्रश्न का उत्तर हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के जीवन में छिपा है। यदि श्री कृष्ण को केवल मंदिर में विराजमान भगवान के रूप में देखा जाए, तो हम उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही सीमित भाग ही देख पाएंगे। कृष्ण को समझने के लिए उनके जीवन को देखना होगा, एक ऐसा जीवन जिसमें जन्म से लेकर अंतिम समय तक परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और तभी तो वो कहलाए हम सबके चहेते श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। और ये समय बहुत खास है, क्योंकि ये केवल एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म के विनाश के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार का धरती पर आगमन था। हमने सुनी है कहानी कि मथुरा का कंस, राजा कंस बहुत अत्याचारी था। जब उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कराया, तो आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। और ये सुनकर घबराए कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार यानी कि जेल में बंद कर दिया और उनकी पहली 7 संतानों को मार डाला। लेकिन जैसे ही 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जेल में चमत्कार होने लगे, क्योंकि ये जन्म सिर्फ एक बालक का नहीं, विष्णु भगवान का जन्म था, श्री कृष्ण का जन्म था। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए, वासुदेव जी की बेड़ियां टूट गईं और कंस के डर से वसुदेव जी नवजात कृष्ण को टोकरी में रख कर उफनती यमुना नदी पार करके गोकुल ले गए। मूसलाधार बारिश में शेषनाग ने अपने फन से बालक कन्हैया को छांव दी और गोकुल में भी नंद बाबा और माता यशोदा के घर एक कन्या जो योग माया थी उनका जन्म हुआ था। वसुदेव जी ने कान्हा और यशोदा जी को
पास कान्हा को लिटा दिया और योग माया को लेकर मथुरा वापस आ गए। देखिए जन्म से ही कितनी खास बातें हुई। रोहिणी नक्षत्र, भादो का महीना, आधी रात, जब दुनिया सो चुकी थी। सोचिए विष्णु जी के आठवें अवतार थे, देवकी की आठवीं संतान थे और आठवें दिन यानी अष्टमी के दिन ही जन्मे थे और उनका जन्म हुआ था अंधकार भरी जेल में। अंधकार भरी जेल जो अज्ञानता का प्रतीक है और कृष्ण का जन्म ज्ञान और प्रकाश के आगमन का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म धरती पर लेना सिर्फ एक महान राजा या बालक का जन्म नहीं था, बल्कि ये हमारे मानव इतिहास, धर्म और जीवन दर्शन का सबसे बड़ा मोड़ था। शास्त्रों और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार उस समय धरती पर कंस, जरासंख और दुर्योधन जैसे अत्याचारी राजाओं का बोलबाला था और आम जनता त्राही त्राही कर रही थी। और तभी तो देखिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और अगर श्री कृष्ण जन्मते नहीं, श्रीमद् भगवत गीता जैसा अमर ज्ञान हमें कैसे मिलता? मानव जाति को भगवत गीता जैसा महान दर्शन नहीं मिलता अगर श्री कृष्ण नहीं जन्मते। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी तनाव, मोह और दुविधा से निकलने का सबसे सटीक गाइड है। आज भी आपको आपके सारे प्रश्नों का जवाब उस छोटी सी भगवत गीता में मिल जाएगा। कृष्ण के जन्म से पहले लोग अक्सर किस्मत, भाग्यवाद या कर्म कांडों में ही उलझे रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने दुनिया को सिखाया कि फल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म यानी कि अपने सच्चे मन से अपना कर्तव्य करना ही सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है। और देखिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने नियमों और मर्यादाओं में रहकर जीवन जिया, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है जिन्होंने जीवन के हर रंग को पूरी तरह से जिया। एक बालक के रूप में नटखट बनकर, एक प्रेमी के रूप में राधा के प्रति निश्चल प्रेम और सुधामा के साथ अटूट दोस्ती निभाकर, और महाभारत में बिना हथियार उठाए पांडवों को जीत दिलाकर। श्री कृष्ण के जीवन से, उनके जीवन के हर पहलू से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन कोई बोझ या दुख नहीं, बल्कि एक उत्सव है, एक लीला है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, जैसे श्री कृष्ण ने जेल में जन्म, बचपन से ही उन्हें मारने की साजिशें हुई, उन सब में भी मुस्कुराते रहे। जब पूतना उनका वध करने आई, जब शेषनाग ने उन्हें डसना चाहा, और भी हजारों श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन उन सभी विपरीत परिस्थितियों में श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। और उन्होंने मुस्कुराते हुए ही अपने कर्तव्य को कैसे पूरा किया जाता है ये संदेश दिया, और यही उनके जन्म का सबसे बड़ा संदेश है मानव जाति के लिए। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान है, विष्णु का अवतार है। आज सारी दुनिया में उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण के जन्मदिन की आज एक बार फिर से आपको ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं।

0: वतन। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तक ए ब्रजवाला। श्री कृष्ण के जन्मदिन पर आज ये भजन सुनवाया और आप में से बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भजन सुनाइए, तो जरूर सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल ये था आज का चिंतन, और आज का चिंतन श्री कृष्ण को समर्पित और उनके भक्तों को समर्पित। श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है वो कमाल का है। और देखिए, उनके बारे में कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण राजा थे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, और उन्होंने राजा होते हुए भी शस्त्र उठाने की बजाय अर्जुन के सारथी बनना पसंद किया। आज के समाज में देखिए, जहाँ पद के आधार पर काम को छोटा बड़ा समझा जाता है, वहीं कृष्ण बताते हैं कि काम की गरिमा पद में नहीं, उसके उद्देश्य और उसकी निष्ठा में होती है। श्री कृष्ण भगवान थे, विष्णु के अवतार थे। वो चाहते तो अपनी शक्ति से युद्ध का परिणाम क्षण भर में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य को उसकी जिम्मेदारी स्वयं निभाने दी। वो मनुष्य को आश्रित नहीं बल्कि सक्षम बनाना चाहते थे। वो तो भगवान थे, चुटकी बजाकर कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक इंसान रहकर ही संभव है, ताकि लोगों को ये समझ आए कि अगर ये इंसान ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यही संदेश दिया श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, और श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनकर इस मानव जाति को। बातें बहुत सारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके बारे में बातें पढ़ना। कुछ बातें मैंने शेयर की और आज के चिंतन को आपने पसंद किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू हंसा जी, थैंक यू विजय गिडूरी जी, अमिता जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात लिखी है। थैंक यू साथ देने के लिए, थैंक यू। एंड नलिनी जी, मृदु जी, अर्जुन जी, महेंद्र बजारिया जी, रागिनी जी, रोशनी, फतेह पटेल, डॉक्टर अशेक पटेल, अरुणा जी, संध्या जी, रोहित, शेखर आनंद जी, रानी जी, प्रतिभा, चंदू जी, उल्लास जी, प्रज्ञा, भावना, अरुणा जी, मनीषा शाह, बहुत सारे नाम है आप सभी का, थैंक यू। और चलिए चिंतन को समेटते हैं और एक बार फिर से आपको देते हैं जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. That has to

0: क्या खूबसूरत भजन है ये, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे साथ साथ बहुत सारे साथियों का मैसेज आया है कि ये गाना अच्छा किया आज आपने बजाया, या कहूँ भजन। और ये मुझे बचपन से पसंद है, और जब मैं छोटी थी तो मुझे गाने का शौक़ है ही शुरू से। तो कोई मुझे कहता था जैसे कि अगर कोई आ रहा है तो यही मैं भजन गाकर सुनाती थी, तो ये मेरे बचपन से मेरा फेवरेट गाना है। एंड आप सबको भी बहुत पसंद है, मुझे आज ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली है बहुत सुंदर, पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे बहुत ही खूबसूरत लिखा है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो क्या धुन बनाई है। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से लिया था, जिसमें दो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, एक तो सत्यम शिवम सुंदरम और एक ये वाला। तो चलिए, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, और आई एम श्योर आप सबके घर में या तो फलहार बन रहा होगा, या फिर आप टेंपल जाने के लिए गाड़ी में होंगे, या तो फिर आप दर्शन करके लौट रहे होंगे। तो आज तो काफ़ी बिजी रहने वाला है, और देखिए आज फ्राइडे का दिन भी है, तो बस जो भी कर रही है करते रहिए, आज के दिन का मज़ा ही कुछ और है। और इसी माहौल को बनाए रखती हूँ, एक और ऐसा ही गीत सुनवाती हूँ आप सबको।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Manoranjan with Ravi Sharma.

0: आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजों में था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था रविंद्र जैन का। और ये गाना भी, ये भजन भी आप सभी ने पसंद किया है, संध्या भाव सर, भारती जी, अरुणा जी, शुमिला मंगर, जासू जी, आप सबका कहना है कि ये मेरा फेवरेट गाना है। वीरेंद्र चौधरी जी, थैंक यू, आपका मैसेज आया है जन्माष्टमी की, आपको भी ढेरों बधाइयाँ। हंसा वोरा जी, थैंक यू। सलमा जी कैंट में सुन रही हैं, भावना जी हैं हमारे साथ, वंदना गुटका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, एंड फारूक मोहम्मद जी आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। और कुछ बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी सोच के बताती हूँ, फिलहाल सुनवाती हूँ एक और गाना, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। तो ध्यान से सुनिए, ये इन्फॉर्मेशन आप ही के लिए है, और ये संदेश है मर्सिडीज बेंज वेंस की ओर से, और इसके साथ ही ये मैसेज भेजा जा रहा है लाइका रेडियो नेटवर्क के सहयोग से। आप जब खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वैन सिर्फ आने जाने का साधन नहीं होती, बल्कि आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब उसी पर निर्भर करता है। इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वैंस आपके लिए लाया है अप टाइम प्रॉमिस, आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेक फायदों का एक पैकेज है, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंट, ज्यादा देर तक वर्कशॉप का खुला होना और गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग, और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन के खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ाते रहने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब अब एक ही जगह, मर्सिडीज बेंज वैंस आपके साथ है। आज ही मर्सिडीज बेंज वैंस सर्च करें और अपने अपटाइम प्रॉमिस के बारे में जानें और सोचें। नियम और शर्तें लागू रहेंगी। मर्सिडीज बेंज वैंस अपटाइम प्रॉमिस, कुछ पात्रता मानदंडों और बहुत वाहन की अनुकूलता और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विस करवाने पर निर्भर करता है, इसलिए नियम और शर्तें लागू होंगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए mbvans.co.uk/uptimepromise।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: रफी साहब की आवाज में द ट्रेन फिल्म से लिया था ये गाना, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन से। और ये गाना नाम करते हैं परविंदर मथारू के नाम पर, और साथ ही साथ हमारी मालती जी के नाम पर, जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और राजेश खन्ना की बड़ी फैन है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a extra podcast update. तो आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आ चुका है, नया एपिसोड आ चुका है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का, और इसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस, जिसे होस्ट किया है राज बदरन खुश ने। और लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
4: This just in from Greggs. We've insured the nation against a cheese. That's the Stilton in our new Steak and Stilton Bake, insured because a third of you are currently thinking, but I don't like Stilton. So, if you don't like our Stilton through soft steak and gravy in pastry that flakes all down your top, we'll swap it for a steak bake. Greggs' new Steak and Stilton Bake with free, but I don't like Stilton insurance. Terms apply. Exclusions non, excess non, already bitten it fine in the event of a claim. We'll be very surprised.
5: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
10: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
11: 073-00-99-8823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823।
12: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ. Danny Properties Dubai has something for everyone.
13: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
14: Dubai is the place. 11,
13: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
15: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11. Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
16: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
17: Royal Chai lai hai smart solution for your business.
18: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
17: Rich, authentic taste every single time.
18: Royal Chai, brewed for business.
17: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
19: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया. खुशियों का खजाना.
20: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
21: Krishna, Krishna, Hare Krishna.
22: Chehakti hai khag, lehrati hai tarwar, hilore marti hai talaiya. Sham rang mein rangne ko aaya jo, hai sabka kanhaiya. Like a Radio ki or se, aap sabhi ko Krishna Janmotsav ki shubhkamnaein.
20: Like a.
23: Sounding better than ever in the sunshine. This is Leica Gold.
24: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: लीजिए लता जी के आवाज में एक और खूबसूरत गाना आपने सुना, कब क्यों और कहां फिल्म से। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो आपके लिए लाए हैं NKN मीडिया, फिर से वापस आया है 5 से 6 सितंबर यानी कि कल सैटरडे एंड संडे 6 सितंबर को एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। फीचरिंग सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे वहां पर अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाकरी। फ्री एंट्री है, रजिस्टर कीजिए एट nknproperty expo.com पर, nknproperty expo.com पर। और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: The £1 aaj aapko dega 127 Bharatiya rupaye, 375 Pakistani rupaye and 166 Bangladeshi takas.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 106.08 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
5: Leica Gold.
6: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है।
10: दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
11: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
12: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
11: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
14: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
15: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
14: ये तो बताओ कोई पता चला?
15: गुरु गुरु,
16: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
14: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
16: शीघ्र
14: शीघ्र।
16: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
17: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
18: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
19: Hi, this is Arbaaz Khan. For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
5: We're finally going home for the wedding.
8: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
5: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
8: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
5: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
8: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
5: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
20: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by
1: by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
20: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 24-hour line.
21: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: One day to go. The NKN Dubai Property Expo. London Hilton Park Lane. Supported by Leica Radio Network. Feel good classics all day. Leica Gold.

0: लता जी की आवाज में महबूबा फिल्म से था ये गाना, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की फिल्म, म्यूजिक बाय आरजी बर्मन। और उससे पहले आशा भोसले और किशोर दा की आवाजों में ये वादा रहा, हम सभी का फेवरेट गाना, जिसमें थे ऋषि कपूर और साथ में थी पूनम ढिल्लन। और आज आपको बता दें कि ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी है। कहने में बहुत अजीब लग रहा है कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ऋषि कपूर हमारे बीच अब नहीं रहे। मतलब कितनी छोटी सी उम्र में, 67 ईयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अभी भी हमारी आंखों के सामने आता है जब भी उनका कोई गीत सुनती हूँ। और फिर सोचने पे मजबूर होती हूँ कि अरे ऋषि कपूर इतनी जल्दी चले गए। यू नो, कितने सारे लोगों के फेवरेट हीरो रहे हैं, मुझे भी उनकी फिल्में उनके गाने बहुत पसंद हैं। उनकी फिल्म से ये गीत सुनवाया आप सभी का फेवरेट तू तू है वही, और ये उनके सारे फैंस को डेडिकेट किया। और आपको बता दें कि प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर है, आप हमारा साथ दे रहे हैं, अपने मैसेजेस भी भिजवा रहे हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि कल मेरा फास्ट है तो खाने पीने की किसी भी चीज़ की फ़ोटो मत भेजना, तो किसी ने भी नहीं भेजी, सिर्फ संध्या को छोड़कर। संध्या, आपने मालपुओं की फ़ोटो भेज दी, कितना पानी आ गया उसको देख कर हूँ मैं, अब क्या करूँ। अब अगली बार जब आप मिलोगी ना तो मालपुए बनाकर लाने पड़ेंगे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मालपुए। और आपने जो पानी मुँह में लाया ना उसका चाय पीकर काम चलाना चला पड़ा, क्योंकि खा तो सकते नहीं थे कुछ। आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू। और घर में फलार की खुशबू उड़ रही होगी, या आप कर भी चुके होंगे, और वैसे आज तो फलाहार ही किया जाता है, लेकिन जन्म के बाद खाना भी खा लिया जाता है। और ये त्यौहार ऐसा ही है कि आराम से बढ़िया माल पकवान खाओ, भगवान का जन्मदिन था। जन्मदिन है तो चलिए बातें करेंगे उस बारे में भी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: One pound आज आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, और याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा आपको via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply होंगी.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
5: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
7: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
8: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
7: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
11: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
14: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
15: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया. खुशियों का खजाना.
16: मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीसे मिले.
17: प्रेम की लहर और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है जब कान्हा के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है. श्रीखंड सा खट्टा और माखन मिश्री सा मीठा मीठा, कितना लुभावना है ये कहना. आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई लाइका रेडियो की ओर से.
18: लाइका Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: खूबसूरत गाना आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज में, और ये थी फिल्म गुमराह जिसकी हीरोइन थी माला सिन्हा, और माला सिन्हा ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। रवि का म्यूजिक था, शानदार म्यूजिक, और इस गाने को आप सबने पसंद किया है। अनिल सोनी वियाना से कहते हैं कि ऋतु मेरा फेवरेट गाना है। अमिता जी आपका ये गाना बहुत ही फेवरेट है, उल्लास आपको भी ये गाना अच्छा लगता है, तो चलिए आप सबके नाम पर करती हूँ ये गाना। और हमारे विजय गुडूरी जी आपका मैसेज आया है, कहते हैं ऋतु मैंने सुना था एक बार आपने कहा था कि मैंने चाय छोड़ दी है। आपने बिल्कुल सही सुना था, मैंने चाय सच में छोड़ दी थी, लेकिन बहुत मुश्किल है चाय को छोड़ना। तो पहले मैं आपको बता दूँ, सच मैं वैसे बताती नहीं हूँ, मैं 3-4 कप बड़े बड़े भर के चाय पीती थी, देन मुझे लगा कि यार ये चाय बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि कम करती हूँ, तो बीच में मैंने बिल्कुल छोड़ा, लेकिन फिर मुझे थोड़ी क्रेविंग हुई तो मैंने कहा चलो कट डाउन कर देती हूँ। फिर मैंने 2 फुल कप चाय पीना शुरू किया, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, मतलब वही शाम के टाइम पर, एंड देन फिर मैंने उसको भी कट किया। अब मैं 1/2 कप मॉर्निंग में पीती हूँ और 1/2 कप इवनिंग में पीती हूँ, और यहाँ आती हूँ तो कभी कभार जब मुझे लगता है कि यार चाय की थोड़ी ज़रूरत है तो थोड़ा सा ले लेती हूँ इंग्लिश टी, बाकी तो फिर मेरा रूटीन में तो वही एक मॉर्निंग में 1/2 कप और एक इवनिंग में वही चल रहा है। और मैं ये भी छोड़ना चाहती हूँ पर छूट नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं जाती हूँ तो वो फिर चाय पिला देते हैं, यू नो डिफ़िकल्ट हो रहा है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ मॉर्निंग की रखूँ और फिर मॉर्निंग में भी छोड़ दूँ, लेकिन आपने सही सुना था। और गुरुदेव कहते हैं कि क्या आप फास्टिंग में ड्रिंक कर सकती हैं? हाँ, मतलब ड्रिंक मतलब पानी, जूस ये सब पी सकती हूँ, वो वाला ड्रिंक नहीं। और फास्ट में ये जो जन्माष्टमी का फास्ट होता है, ये खाते पीते रखा जाता है आराम से, ना फलार कर लो, इसमें अन्न नहीं खाया जाता है हमारे यहाँ, लेकिन आप फलार कर सकते हैं, फल फ्रूट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, और जो सेंधा नमक की चीज़ें हैं वो भी खा सकते हैं, तो वो भी मैं खाऊंगी। अब भूखा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और बिना नमक के तो बिल्कुल ही नहीं मैं रह सकती हूँ। लेकिन हाँ, फिलहाल एक नियम होता है कि आप दिन में एक ही बार खाएंगे या भगवान की पूजा करके खाएंगे, ये नहीं कि फास्ट है तो सवेरे सवेरे खा लिया, नहीं, मंदिर जाकर दर्शन करके यू नो तब ऐसे खाएंगे, तो वो एक नियम का हम लोग पालन करते हैं, सो ऐसा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और अब एक और खूबसूरत सा गीत आप सबके नाम कर दिया जाए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: तो आपने अभी अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज सुनी कविता कृष्णमूर्ति के साथ, एंड थैंक यू नलिनी जी आपके मैसेज के लिए. कहती है गुमराह फिल्म का गाना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपने उसे थोड़ा रुला भी दिया. क्या बात है, कोई खास बात जुड़ी है क्या उस गाने के साथ? चलिए, हमने वो गाना आपको डेडिकेट किया और अब आपको बताते चलें कि भाई जो बिग बॉस के चाहने वाले हैं उनको तो इंतज़ार करना काफ़ी भारी पड़ रहा होगा, क्योंकि इस संडे से बिग बॉस का 20th सीज़न शुरू होने जा रहा है, जिसे एक बार फिर से होस्ट करने जा रहे हैं सलमान खान. और ये शो रात को 9:30 बजे हर रोज़ कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा, साथ ही साथ जियो स्टार पर भी. सो फर्स्ट टाइम जियो स्टार दिखाएगा इसके एवरी एपिसोड को अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड. तो आप अगर 2400 घंटे देखना चाहते हैं कि कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं जब भी अपने फ्री टाइम में, तो आप जियो स्टार पर वो सब भी देख सकते हैं. और आपको बता दें कि जियो स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड.
3: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious, delicious possibilities with Tilda.

0: जब ऋषि कपूर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो शैलेंद्र सिंह ही बने थे उनकी आवाज, और ऋषि कपूर और शैलेंद्र सिंह का ये कॉम्बिनेशन आज हमने आपको सुनवाया, क्योंकि आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी जो है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: और आपको याद दिला दें कि जैज एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स लाइव इन लंदन विद आफताब शिवदासानी, सिंगर्स अमन त्रिखा एंड मयूरी पटालिया, और ये सब होने जा रहा है सैटरडे 3 अक्टूबर एट हैरो आर्ट सेंटर में। टिकट्स बॉक्स ऑफिस से आप खरीद सकते हैं, और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
4: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold rate is 106.08 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: जी, अब जाने की बेला आ गई है। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार बाली ब्रह्मभट्ट आपका साथ देंगे, लेकिन मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी सैटरडे वाले शो में, यस अपने शो में, और देखेंगे कल यादें में कौन है और थ्री वर्ड्स गेम में कौन सा गाना होता है और क्या कुछ होता है, तो कल जरूर साथ दीजिएगा। और आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए, और बस अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे मिलूंगी कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी।
5: हे देयर, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
6: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
7: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिग बॉस सीजन 20, स्टार्ट्स दिस संडे एट 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410, दैट्स 0208574-8410।
9: साफो ट्रेवल Auto protected.
10: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
12: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
13: अपना बनाया तेनू,
12: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फट।
14: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
15: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
16: Dubai is the place.
15: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
17: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
18: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
19: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
18: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
19: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर table today.
20: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
21: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
22: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
21: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
22: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
23: Hey, Prasann Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
22: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

0: अब क्या कहूँ मैं, इतने अच्छे अच्छे गीत, और मैं सुनते सुनते मुझे लगा कि ये गाना पूरा ही ना हो। आज है जन्माष्टमी। यस, ही इज वर्शिप्ड एज द 8th अवतार ऑफ विष्णु एंड एज द सुप्रीम गॉड इन हिज ओन राइट। आई मीन वाइड डिवाइन क्वालिटीज ऑफ लव, कंपैशन, प्रोटेक्शन, टेंडरनेस। इनका बर्थडे मनाया जाता है बाय हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन कृष्णा जन्माष्टमी अकॉर्डिंग टू द ल्यूनी सोलर हिंदू कैलेंडर, जब लेट अगस्त या अर्ली सितंबर में, ऑन द ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इनका अवतार द बर्थ इन मथुरा, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, एंड अवतार इनका एंड हुआ भालका सौराष्ट्र में। आज की तारीख में वो भालका सौराष्ट्र इज वेरावल इन गुजरात। इनके पेरेंट्स देवकी मदर, वासुदेव फादर, यशोदा फॉस्टर मदर, नंद फॉस्टर फादर। सिबलिंग्स देखे जाए तो बलराम इनका बड़ा भाई, सुभद्रा हाफ सिस्टर, एंड अदर चिल्ड्रन ऑफ वासुदेव देखा जाए तो। एंड इनके बच्चे प्रद्युमन सांबा, देन चारुदेशना एंड अदर चिल्ड्रन। चलो हम देखते हैं इनके बारे में। कृष्णा वॉज बोर्न इन मथुरा टू देवकी एंड वासुदेव, बट रेज्ड बाय नंद एंड यशोदा इन गोकुल टू एस्केप हिज मैटरनल अंकल जो थे कंस, किंग कंस। एज टेक्स्ट्स में जो लिखा गया है कि यू नो ही हैड मिरेक्युलस एलिमेंट्स, एनचांटेड ऑल द गोपीज विद हिज डिवाइन फ्लूट प्लेइंग, एंड रास लीला इन्होंने रचाई, एंड कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए इन्होंने काउंट्स को मारा, एंड ही रिस्टोर्ड ऑर्डर इन मथुरा, एंड देन ही वेंट टू एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ द्वारका, एंड ही प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द कुरुक्षेत्र वॉर, अर्जुन के चैरिटियर बन के, एंड डिलीवरिंग द फिलोसॉफिकल टीचिंग्स ऑफ भागवत गीता। अगर मैं बोलने जाऊं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन ऑल आई कैन टेल यू इज श्री कृष्णा के हाथ से बहुत कुछ छूट गया। पहले माँ खोई, फिर पिता खोया, फिर नंद यशोदा भी खोए, फिर राधा भी खोई, मथुरा भी खोया, गोकुल धाम भी खोया। नहीं छूटा तो केवल दिव्यता, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्णा उत्सव के प्रतीक है दुख के नहीं। श्री कृष्णा से बेहतर आपको कौन सिखा सकता है कि सब कुछ खो जाने पर भी खुश कैसे रहा जाए। आप और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मे लॉर्ड कृष्णा फिल योर लाइफ विद लव, पीस एंड जॉय। तो गाने सुनते हैं, दो और गाने हैं, फिर उसके बाद हम ऋषि कपूर जी के बारे में बात करेंगे, एंड विल रिमेंबर हिम ऑन हिज 74th बर्थ एनिवर्सरी। मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, स्पॉन्सर्ड बाय जयमिन।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: The rates fluctuate and it's recently changed. Your £1 in British sterling can get you up to 127.45 Indian rupees, just changed. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
4: Southall Travel can take you there.
1: Southall Travel, at all protected.
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
9: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
10: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
9: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
10: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
11: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
10: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
12: Ayodhya ki awaaz ab London ki dharti par. Siddhashram Dham mein Param Pujya Shri Raj Rajeshwar Guruji ki sanidhya mein Devi Pandit Gaurangi Gaur.

0: Evo 2025 today, or visit mirrorboiler.com. Terms and conditions apply. Mirror Boiler, get ready for winter.
1: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना.
2: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocenter.org.
3: Krishna, Krishna, hai Krishna.
4: चहकती है खग, लहराती है तरुवर, हिलोरे मारती है तलैया. शाम रंग में रंगने को आया जो है सबका कन्हैया. लाइका रेडियो की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं.
5: लाइका Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस, ऋषि कपूर।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: That's right, born in Bombay. That's Rishi Kapoor. We are remembering him very fondly. A great actor who left us very early. On 30th of April 2020, at the age of 67. Nitu Singh, of course, famously, everybody knows the couple, the gorgeous couple, who have done so many songs together. They got married in 1980, and inke do bacche, Ridhima Kapoor Sahani and Ranbir Kapoor, or पिताजी माताजी ग्रैंडफादर, ये सब तो मैं आपको कहूँगा ही नहीं क्योंकि यू ऑलरेडी नो। इसका डेब्यू जब हुआ था एक छोटा सा बच्चा एट द एज ऑफ 3, श्री 420 प्यार हुआ इकरार सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है पर प्यार हुआ वो गाने में 3 साल का एक बच्चा आ गया था। एंड देन मेरा नाम जोकर में एज यंग राज कपूर, एंड फिर उसके बाद वो गाना था तीतर के दो आगे तीतर, है ना। एंड डिड यू नो तीतर के दो आगे तीतर, दैट सॉन्ग वॉज पिक्चराइज्ड एट नल सरोवर इन अहमदाबाद। एंड एज एन एडल्ट फर्स्ट फिल्म मशायर तो नहीं, यस विद डिंपल कपाड़िया, बेस्ट एक्टर। उसमें भी इन्होंने पोल खोल दी थी बाद में कि 30,000 रुपये देकर मैंने वो अवार्ड लिया था। अब वी वोंट गो इनटू द कंट्रोवर्सीज। बिटवीन 1973 एंड 2000, 92 फिल्म्स एज लीड, रोमांटिक लीड, रफू चक्कर, कभी कभी, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, क्या कव्वाली नहीं, सरगम फिल्म, ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड। दूसरी एक फिल्म थी चांदनी, उसमें भी ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर अवार्ड्स। एंड देन नसीब फिल्म, कातिलों के कातिल, पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ प्रेम रोग, एंड देन कूली फिल्म, नगीना, हेना, दीवाना विद शाहरुख खान, बोल राधा बोल, आपने सुना वो हांडी वाला गाना जो, एंड दामिनी, अभी आपने गाना सुना, बड़े दिल वाला, उसमें नॉमिनेशन मिला था उनको, जी हाँ, खेल खेल में, कर्ज, ही गॉट लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर दीज फिल्म्स, यू नो, खेल खेल में, कर्ज, टीना मुनीम के साथ, ये वादा रहा, डिम्पल, आफ्टर 12 इयर्स अगेन ही एक्टेड इन द फिल्म्स सागर, तवाइफ फिल्म, नसीब अपना अपना, घर घर की कहानी, हथियार। फिर 2000 के बाद ऑफ कोर्स ही वाज टेकिंग ऑल दी सेकेंडरी रोल्स एंड फादरली रोल्स एटसेट्रा। 92 फिल्म्स फ्रॉम 1973 टू 2000, 51 सोलो फिल्म्स, ओनली 11 वर सक्सेसफुल रियली, एंड 41 वर मल्टी स्टारर्स, 12 फिल्म्स वर टू हीरो फिल्म्स, हिम बीइंग इन द लीड। वो 12 फिल्मों के नाम अगर मैं आपको बताऊं तो खेल खेल में, फिर हम किसी से कम नहीं, फिर बदलते रिश्ते, आपके दीवाने, सागर, एंड देन चांदनी, अजूबा, दीवाना, दामिनी, गुरुदेव, दरार, कारोबार। मल्टी स्टारर्स में इन्होंने कभी कभी, नसीब, कातिलों के कातिल, कूली, दुनिया, सितमगर, जमाना, घर परिवार, और डबल रोल्स जो किए थे 3 फिल्मों में, एज राजा एंड इंस्पेक्टर राम इन फिल्म राजा 1975 की, 1992 में बोल राधा बोल में ही वॉज किशन मल्होत्रा एंड टोनी, एंड 2000 में कारोबार फिल्म में अमर सक्सेना एंड रोहित सिन्हा। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आपको पता चल रहा है ये सब फिल्में आपने देखी हो तो डबल रोल, हाँ इधर डबल रोल किया था, 5 फिल्म्स विद डिंपल कपाड़िया, देयर वाज बॉबी फिल्म, सागर, अजूबा, प्यार में ट्विस्ट 2005 में एंड पटियाला हाउस 2011 में. सो लेट्स लिसन टू हिज सॉन्ग्स एंड रिमेंबर ऋषि कपूर सो फॉन्डली टुडे. मैं हूं बाली ब्रह्मभट आपकी खिदमत में.
2: तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो.
3: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, we got US dollars 1.3497, Indian rupees 107.52, Afghan Afghanis 88.98, Pakistani rupees 374.26, Kenyan shillings 174.7 and Mauritian rupees 63.19.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.63 per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
5: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
6: जेम इन फूड्स स्पॉन्सर्स गोल्ड आफ्टरनून, फ्रॉम दाल भात, पाव भाजी एंड बिरयानी टू नमकीन, खाखरा, चिक्की, पोटैटो चिप्स, मैंगो पल, पानी पूरी एंड स्वीट्स, एवरीथिंग डिलीशियस, एवरीथिंग फॉर एवरीवन.
7: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
8: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963

0: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
1: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376.
2: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line
3: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
4: No, sorry mate.
5: No, we don't have that part.
6: Have you tried down the road?
7: We can get it in, but it won't be for a few days.
1: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
11: दुबई इज कमिंग टू लंदन
0: दिस 5th एंड 6th ऑफ सितंबर. स्टेप इनटू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो बाय NKN मीडिया
11: एट लंदन हिल्टन ऑन पार्क लेन. मीट टॉप एलीट developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
0: Special appearances by Chitranga Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
11: Hurry and register now
0: at nknpropertyexpo.com.
11: Your next investment could begin here.
0: Official radio partner, Leica Radio.
12: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो चलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: But I don't like Stilton. Insurance. Terms apply. Exclusions non. Excess non. Already bitten it. Fine. In the event of a claim, would be very surprised.
1: Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
5: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
5: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
6: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
5: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
10: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
11: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
10: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
11: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322727274. बुक योर टेबल टुडे.
12: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
13: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान तब हस्तों में जान.
15: Catch the brand new season of Big Boss, hosted by Salman Khan. Starts this Sunday at 9:30 p.m. and every day on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house only on Jio Hotstar.
16: Dubai is coming to London.
15: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
16: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
15: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
16: Hurry and register now
15: at nknpropertyexpo.com.
16: Your next investment could begin here.
15: Official Radio Partner, Leica Radio.
17: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
18: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.
1: And that was a song from The Great Gambler, 1979 ka Kishore Kumar and Asha Bhosle. Pehle pehle pyar ki mulaqatein. And this one is Jeevan ke har mod pe mil jayenge. Hum bhi is hour ke dusre hour mein mil jayenge. Dusre paar. झूठा कहीं का 1979, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ. मैं दूसरे पार मिलूंगा आपको आफ्टर दिस आवर. आर डी बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा की लिरिक्स. वी आर विशिंग एंड रिमेम्बरिंग द वंडरफुल ऋषि कपूर्स 74th बर्थ एनिवर्सरी.

0: कर रहा है रे?
1: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
1: गुरु गुरु,
3: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
4: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
5: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
11: 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
13: Danu 11, 11. Danu Properties.
14: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर। सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
15: नाम है तेरा।
14: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 0208-426-0678 पर कॉल करें। जय श्री राम।
16: The wait is finally over.
17: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
16: मिर्जापुर is coming to the big screen.
18: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है ना सियासत से।
16: पावर, रिवेंज और मिर्जापुर की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
19: अबे कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
16: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स अब सिनेमा में और भी बिगर। मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ।
18: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
5: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
2: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
11: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
6: लाइका रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन। Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a beautiful song. Film hai Dhan Daulat. जीना क्या जी प्यार बिना, सही मैसेज है एक्चुअली. जीना क्या जी प्यार बिना. एंड ऋषि कपूर के साथ मेरा स्पेशल एक रिश्ता था. जब आ अब लौट चले फिल्म के लिए मैंने जब गाया, वो चेक लेकर आए मेरे को पे करने के लिए, मैंने मना कर दिया. मैंने कहा, मेरी माँ ने कहा था कि राज कपूर प्रोडक्शन के लिए गाओ तो पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा देना चाहिए. एंड ही ब्रॉट रणधीर कपूर एंड श्रवण जी ऑफ नदीम श्रवण एंड सेड रात को के ये देखो बाली क्या बोल रहा है. उसके बाद जब भी मुझे मिलता था, आई मीन मिलते थे सन एंड सैंड में, उससे बॉब कितनी है, बॉब कितनी है, ही लव्स माय ब्रदर, ही लव्ड माय ब्रदर बॉब. सो दे यूज्ड टू हैव गुड ड्रिंक्स टुगेदर, ऋषि कपूर.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Currency updates are sponsored by Lemfi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3518, Indian rupees 127.57, Afghan Afghanis 88.83, Pakistani rupees 374.85, Kenyan shillings 174.91, and Mauritian rupees 63.29.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think Lemfi. Lemfi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download Lemfi now. T's and

0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £105.36 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Gold, traffic and travel.
2: This is Martin with your travel. It's queuing on the A312 the Parkway this afternoon southbound before you get to the M4 Junction 3. Slowing on the A4020 Uxbridge Road between the Parkway and Southall Park. A312 Church Road and Mandeville Road heavy from the White Hart roundabout through to the Target roundabout and then North Holt Station. And queuing on the A406 North Circular Road southbound at the Hanger Lane Gyratory. A40 Western Avenue slowing westbound before Gypsy Corner, and it's slow on the A3 West Hill northbound from Tibbetts Corner through to Upper Richmond Road. Congestion on the A316 Chertsey Road westbound from Twickenham Bridge to Hospital Bridge Road roundabout into the Tube. Minor delays on the Bakerloo line due to cancellations.
0: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Hello?
4: Mel, something huge has landed.
3: The UFOs, it's all over the news.
4: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
3: I think that's why the aliens are here too.
4: I do now. Gotta go.
5: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale event.
6: Ye hai Leica Gold. 10:35 a.m.
0: Bali Brumbat on Gold Afternoons. Leica
7: Gold. Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.
8: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods, bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
9: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Southall Travel.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
13: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
14: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
13: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
14: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
15: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
14: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
17: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
18: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
19: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
18: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
19: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
18: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
19: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
20: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
21: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए रे. वेल अ हैप्पी वाली जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. मे कृष्ण भगवान जी गिव यू ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम मुगले आजम इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर. दिस लवली ट्रैक वॉज स्पॉन्सर्ड बाई डेरी वैली.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Like a gold.
4: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: breaks are brought to you by Southall Travel.
1: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Call Southall Travel today on 0208 574 8410. Southall Travel is at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
2: TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays. Hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call Travel Hub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: Travel Hub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
0: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
2: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
9: नाम है तेरा
2: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 0208426678 पर कॉल करें जय श्री राम
10: क्योंकि आ गया है
11: खतरों के खिलाड़ी सैटरडे एंड संडे एट 8 PM ऑन कलर्स टीवी पावर्ड बाय स्टार टूर्स एसोसिएट स्पॉन्सर लायन क्रॉफ्ट
12: खिलाड़ी
13: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
14: तो माने या न माने दिलदारा
11: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
15: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिली
17: प्रेम की लहर और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है जब कान्हा के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है श्रीखंड सा खट्टा और माखन मिश्री सा मीठा मीठा कितना लुभावना है ये कहना आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई लाइका रेडियो की ओर से
18: लाइका
19: मैं हूँ नीसा नासिर लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है बिग शो सुनना भूलिएगा मत

0: वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड मेरे पास आपके लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं, इनमें है गानों का पिटारा, सो से ट्यून कॉज आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चले आई. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी 12th Thief.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai
4: like a gold
1: tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Well, the song is indeed a tasty, a lovely track from the super duper hit movie Shole. Guess कीजिए कौन सा गाना है. Well, थोड़ा सा hint दे देता हूँ. This song is actually when you know Hema Malini ji is on the tanga and Dharmendra अपने ही अंदाज में उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं. So enjoy this lovely track only for you.

0: It is Friday, so प्यारे वाले गाने तो आते ही रहेंगे on Gold Drive. Disco Diwane by Nazia Hassan. क्या आवाज है इनकी. What a beautiful song.
1: It's a lie. On Gold Drive.
0: All right, thank you for your messages. इतने सारे messages and actually मेरी information भी काफी बढ़ गई है with your messages. So I had asked you, मैंने एक झूठ बोला था ऋषि कपूर के बारे में. So I'd given you three options. The first option was ऋषि कपूर के दो अंकल हैं. Which is Shami Kapoor and Shashi Kapoor, whether that's a lie. The second option was Rishi Kapoor debuted with Bobby. And the third option was Rishi Kapoor has two children. So actually, jhoot hai option B. Rishi Kapoor debuted as a child actor in Mera Naam Joker. And mujhe, one of the listeners also messaged ki he was the toddler in Shri 420. Wo Pyar Hua, Ikrar Hua mein do bachche chal ke jaate hain. One of them was Rishi Kapoor. Well, thank you so much for sharing that information. Mujhe nahi pata tha. And yes, Vijay ji, Rishi Kapoor ke teen maternal uncles bhi the. Prem Nath, Rajendra Nath and Narendra Nath. But maine kaha tha ki unke do uncles hain, Shami Kapoor and Shashi Kapoor. झूठ है कि नहीं तो वो सच है क्योंकि उनके दो अंकल्स हैं शमी कपूर एंड शशि कपूर. थैंक यू सो मच फॉर योर प्यारे प्यारे मैसेजेस. प्लीज प्लीज प्लीज कीप पोरिंग इन अ लॉट ऑफ मैसेजेस. आपके मैसेजेस मुझे बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म देते हैं. थैंक यू.
1: ये है लाइका गोल्ड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट्स.
0: सो लाइका एक्स्ट्रा'स लेटेस्ट पॉडकास्ट इज विद Mohammad Wakil. In this special episode, Ravi Sharma sits down with the renowned artist Mohammad Wakil to explore the story behind his musical journey. For aspiring singers, Wakil ji also shares an important message about discipline and consistency. Wakil ji reflects on his experience and memorable moments with the legendary Jagjit Singh and Javed Akhtar. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Laika Extra. ये है लाइका गोल्ड. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, 4-स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956-154-846.
4: London, get ready for an unforgettable night.
5: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
4: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
5: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
4: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
5: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
4: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Laika Radio Network.
6: The wait is finally over.
7: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
6: Mirzapur is coming to the big screen.
8: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
6: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
9: Agar Kaleen bhaiya hai wo King of Mirzapur.
6: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. अब सिनेमा में और भी बिगर मिर्जापुर द मूवी इन सिनेमाज नाउ.
10: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
11: Dubai is coming to London.
12: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
11: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
12: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
11: Hurry and register now
12: at nknpropertyexpo.com.
11: Your next investment could begin here.
12: Official radio partner Laika Radio.
13: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान तथा स्टूमिंग जान.
12: Catch the brand new season of Big Boss, hosted by Salman Khan. Starts this Sunday at 9:30 p.m. and every day on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house only on Jio Hotstar.
14: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया. खुशियों का खजाना.
15: लाइका रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Punjabi Dhamaka on Gold Drive. Punjabi!
16: बाबा गड्डी क्यों रोकी आ?
17: की दसा कुड़िए गड्डी दा तां गेर ही अड़ गया.

साडा तां हो गया कंगा झूठा 200 विच पानी पै गया 200 विच पानी पै गया मैं इत्थे जोगा रह गया मैं इत्थे जोगा रह गया ओ रब्बा रही सवारी कली कलैणी कलैणी की मोटर विच चढ़ गई।

0: तेनू लख दे इक सुनावा
1: सुना।
0: तेनू दफ्तर हुणे पचावा
1: सच्ची
0: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई
1: तोबा
0: तेनू लख दे इक।

0: काजल लगाया दिन में रात हो गई इस प्यारे वाले गाने के बाद. वन मोर ट्रैक दिस आवर बट यू स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर विद सम अमेजिंग ट्रैक्स.
1: रिमिनिस दोज़ क्लासिक्स ऑन लाइक अ गोल्ड.

0: नैनो में सपना, सपनों में सजना. दिस अ लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा एंड लता मंगेशकर. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द सुपरहिट मूवी हिम्मत वाला. नाउ हिम्मत वाला वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ 1980s एंड दिस फिल्म मार्क्ड अ ब्रेक थ्रू फॉर श्रीदेवीज करियर इन हिंदी सिनेमा. ऑफकोर्स वो साउथ में काफी फेमस थी, मगर विद दिस मूवी शी बिकेम एन ओवरनाइट स्टार इन हिंदी सिनेमा. एंड कहते हैं दैट जितेंद्र एक्चुअली रिकमेंडेड हर फॉर दिस मूवी एंड शी वाज सो सो सो गुड. एंड इन दिस सॉन्ग शी वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ गॉडेस. यू नो वो जो मटके सारे बीच पे सजाए हुए थे एंड देन शी इज एक्चुअली डांसिंग विद जितेंद्र. वेल व्हाट अ लवली मूवी. एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी आई डेफिनेटली रिकमेंड कि ये पिक्चर देखो. इट्स परफेक्ट बॉलीवुड मसाला. अमजद खान की एक्टिंग, कादर खान की एक्टिंग इज जस्ट सो सो सो गुड. आई एम वीर इन फॉर द लवली सैंडी शाह ऑन गोल्ड ड्राइव ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइका गोल्ड. अवेलेबल ऑन 10:35 AM एंड DAB इन ग्रेटर लंडन एंड वर्ल्ड वाइड ऑन LaikaGold.com, अलेक्सा एंड लाइका रेडियो मोबाइल ऐप.
1: ये या वो.
0: Alright, so it's time for Ye Ya Wo. Now you all know that Mala Sinha Ji is our artist of the week. So mere paas aapke liye do options hain, option A and option B. And you've got to guess, you've got to message me and tell me ki aapko kaun sa gana sunna hai. The first song is Chansi Mehbooba from the movie Himalay Ki Gaud Mein. And the second option is Chalo Ek Baar from the movie Gumrah. Now Himalay Ki Gaud Mein ka gana Chansi Mehbooba is in the vocals of Mukesh Ji. And Chalo Ek Baar is in the vocals of Mahendra Kumar. So message me and let me know ki aapko kaun sa gana sunna hai Mala Sinha Ji ka.
2: WhatsApp message Laika Gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.15 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Laika Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Laika Gold, traffic and travel.
3: This is Martin with your travel. We've still got delays on the M4 this evening, eastbound onto the elevated section from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. The A312, the partway busy southbound before the M4 Junction 3. A4020 Uxbridge Road, heavy between the partway and Southall Park. And slow on the A312 Church Road and Mandeville Road as you head from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to North Holt Station. On the A40 Western Avenue westbound at Gypsy Corner, that earlier accident has now been cleared. To the Tube and minor delays this evening on the Piccadilly line between Acton Town and Heathrow Airport and between Acton Town and Uxbridge. It's due to an earlier faulty train at Acton Town.
4: Yep, I'm still dancing. And there's still time to get in tonight's EuroMillions draw.
5: So turn up that dial.
6: The EuroMillions jackpot is £76 million.
7: EuroMillions from the National Lottery. It could be you.
8: Estimated jackpot. Rules apply. 18 plus.
9: This is Laika Gold.
10: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
11: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Laika Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
12: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
14: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
13: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सेप्टेम्बर।
15: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
13: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
16: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
17: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
16: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
17: गारंटेड
16: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
17: फोन 02085748410।
16: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
18: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
19: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
20: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
21: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
22: प्रेम की लहर और बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है जब कान्हा के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। श्रीखंड सा खट्टा और माखन मिश्री सा मीठा मीठा, कितना लुभावना है ये कहना। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी बधाई लाइका रेडियो की ओर से।
23: लाइका फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
24: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye ya wo.
3: Oh my god, itne sare messages. Well, I'm sure both the songs are really good. Yes, Mala Sinha ji ke dono hi gaane, Chansi Mehbooba और चलो एक बार. वेल, कीप योर मैसेजेस पोरिंग इन. एंड बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रहा है बिटवीन द टू सॉन्ग्स. सो होगा ये दैट द सॉन्ग दैट रिसीव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, आई प्ले दैट सॉन्ग. सो कीप पोरिंग इन योर मैसेजेस.
0: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
4: ये है like a gold.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे बीत जाता है और मैं भी गुम जाता हूँ आपसे बातें करते करते एंड ये गाने प्ले करते करते. वेल, टाइम हो चुका है फॉर मी टू से बाय, बट रिमेम्बर हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. अप नेक्स्ट इज अनिसा नासिर, गिव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. आई एम वीर इन फॉर सैंडिशा, लव यू गाइस.
1: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड हिट्स इन द सन विद लाइका गोल्ड. This is Anissa Nasir with The Big Show.

0: This is Anisa Nasir with The Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
1: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
2: नाम है तेरा
1: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें। जय श्री राम।
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, at all protected.
6: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
7: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
6: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
7: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
11: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
10: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
12: We're finally going home for the wedding.
13: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
12: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
13: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
12: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
13: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
12: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
14: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
15: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया. खुशियों का खजाना.
16: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
17: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन.
0: Anisa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.

0: हुस्न तजसीम हो गया मुझ में और इश्क तस्लीम हो गया मुझ में, शाम ढलते ही जल बुझे आंसू, दर्द ताजीम हो गया मुझ में। और बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मैंने वही गीत जो हैं प्रोग्राम में शामिल किए जो अक्सर व बेशतर आप मुझसे मांगते रहते हैं, इश्क पर। और फ्राइडे हो, इश्क पर बातें हो रही हों, तो मूड ना भी अच्छा हो तो अच्छा हो जाता है। सो मुझे पूरा यकीन है कि आपका मूड अगर पहले अच्छा नहीं था तो अब अच्छा हो गया होगा, और अगर पहले अच्छा था तो बहुत ही अच्छा हो गया होगा। लेट्स सी अगला गीत सुनने के बाद क्या होता है।
1: This is Anisa Nasir with The Big Show. Like a God. Non-stop classics. Classics. Like a Gold.

0: This is Anissa Nasir with The Big Show. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
3: साफो ट्रेवल Auto protected.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
5: फ्रॉम ब्रेथटेकिंग वेडिंग ज्वेलरी To the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
0: One day to go. The NKN Dubai Property Expo, London Hilton Park Lane, supported by Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Anissa Nasir with The Big Show. Weeknights from 7 p.m.

0: ये गीत सुनवाने के पीछे वजह ये है कि ये डेफिनेटली माला सिन्हा जी के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ है. और जैसा कि मैं जब से वो हम उनके बारे में बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गाने सुनवा रहे हैं, तो मैं हमेशा यही कहती चली आई हूँ कि बे इंतहा खूबसूरत जो हैं वो ये आर्टिस्ट हैं, और ऊपर वाला उन्हें सलामत रखे, ताकयामत रखे. इस गाने में वो इतनी सुंदर दिख रही हैं, इतनी सुंदर दिख रही हैं कि मैंने सोचा कि ये गीत सुनकर आपकी वो याददाश्त ताज़ा हो जाएगी. सो आई होप यू enjoyed it.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: मलाल ये है कि हम चाह के भी बना ना सके तुम्हारे साथ किसी शाम चाय का मंजर। और मैं तो कहती हूँ चाय क्या, हम तो पूरे पूरे डिनर का स्वाद लेते हैं आपके साथ मिलकर। रूह की ग़िज़ा ढेरों ढेर आप तक पहुँचाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज भी पेट खूब अच्छी तरह से भरा होगा। हैव अ सुपर डुपर वीकेंड और बशर्ते ज़िंदगी मंडे फिर हाजिर होती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप लिसनिंग टू लाइका गोल के प्रोग्राम, बिकॉज एक से बढ़कर एक प्रोग्राम और एक से एक बढ़कर हमारे पास प्रेजेंटर्स हैं। तो कीप लिसनिंग। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, रब सुने दे हवाले।
1: दिस इज अनीसा नासिर विद द बिग शो। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: बोले क्या कर रहा है रे?
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ कोई पता चला?
3: गुरु गुरु,
4: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
3: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
4: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
2: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
5: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Online at Eventbrite.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
8: Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
7: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11, 11.
11: Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties.
13: जैमिन फूड्स की तरफ से लाइका रेडियो नेटवर्क के सभी लिसनर्स को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जैमिन, द एथनिक टेस्ट ऑफ इंडिया, खुशियों का खजाना।
14: अप नेक्स्ट, नॉनस्टॉप क्लासिक्स ऑन गोल्ड नाइट्स ऑन लाइका गोल्ड।
15: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड। मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 टू
16: जुल्फ से।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Ready UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
2: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Banana function लगा हुआ है.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
1: साउथ हॉल ट्रेवल. Protected.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
7: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा Holidays. What's your travel mantra?
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
8: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
9: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
10: ताजा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ.

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. Leica Gold on 10:35 a.m.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
2: Oh, terrible weather.
1: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
3: See ya, good luck with the interview.
2: Thank you, bye.
1: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
5: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
8: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए Leica रेडियो और Leica गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com
9: क्लासिक नगमे आपके अपने Leica गोल्ड पर